त्यो राइट अन द टाइम दसैँमा नै नहुन सक्छौँ त्यो त्यस कारणले गर्दा पनि वी जस्ट स्टार्टेड टु प्ले फ्रम नाउ सो इट्स स्टार्ट 11th अफ अक्टोबर बट एज वी आर नट अन द टाइम अन द्याट डे द्याट्स वाइ वी स्टार्टेड टु प्ले फ्रम दिस विक सो वी माइट स्टार्टेड प्लेइङ द दसैँ सङ फर 2 weeks सो दिस विल बी आवर फर्स्ट सङ